आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

ज़ावीन आरा या दिमाया हिंगे के निरो आरा इनी वाह के फोरी गए नमविस ज़ावीन के मोन मथिम फिरुनो असर तकाए को आरा के बस्तम में दुखेंडे मुले माहौलक कुल्ले हिमें कमे फिरवी ए ज़ावीन मडमडुंग हिंगा लाफगोस आरा के कुरिमती का हुट्टी एकको मच्च तिरवी ए दे आयला के मेंबरों नेवा ही फाट्टा लेंती भी एन उतनवस हिमें कम के तिरेगा ज़ावीन एना के अतु गोई कुड़ा फोशी हुलवाली ए माँ बुड़ गिरिटी कुरुमें ने एकमको रीति आधा के अंगोटिये के ज़ावीन के को में निम्मु में फदें ए अंगोटी वेस इख्तियार को फावणी फरुआ तिरिका माए कुए मेदुगा आधा के गोतका फरुमा को फावा रंग एसेंगेने ए अंगोटिया की आरा के अथा नुहन कुले एगे रीतिकं फंडु नुवाने फद अंगोटिये के एना के अडु मुलितना वेरिवे फावा हिमे कम के तिरें नुहन साफ को साबित कमाए कुगे इवे मुंदी ए थिंग आहरु के तीकु इंतिजारा फो हितुक रक्का को फावा शोर तके ज़ावीन एना के लोबिवा एम्मे के कुरिमती का बुन्ये आरा या दिमावी दोहं फेशिगें आहरिंगे कुम्मे दोहे के एम्मे उफाविर बैकी थियाईये।

0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: ए मावे सुट्टा दाफिंग
2: आहार में सुट्टा दाफिंग
3: ए लिस्ट को मावे सीमना ला
4: अमिल्ल फैसा आंदा गें अमिल्ल हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमकी किहा मोय कमे ए में मावे सुट्टा दाफिंग
5: दुम्फई आहार में गे हाथुरे दुम्फतु के इस्तेमाल कुरुम के साबुन दिमावा सिही मसल तोगा आहार को हैं मिलियन वुरे किना मीहु मरुआ कमा ताफा सिसाब तकुन दक्का फस नुजे ही अवह दुम्फतु के इस्तेमाल कुरुं हुट्टा लमाहिंगा
6: नुवदी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम अबदुस एम मेगाहर्ट्स

0: खुशबदार गुलशनों ऐमी ऐद का किया लिलेंबा।
1: दिवेय एफएम नुवदिह एक मेगाहर्ट्ज़ दिवेहंगे मुनिफुए फिलवा देनुमुगा अबदुस
2: बरकहत्तरी उफावरी अवहायुदुगे तफनियाया हे दुंता नुवदिह एक मेगाहर्ट्ज़ दिवेय एफएमगे एहंतिरनशा एम्मेहा मुस्लिमा खुन्ना उख्तुन्ना लोहिब्बैक वरिस्कुरां ईद मुबारक।

0: beautiful.
1: Vidhi malega Eid fahaga kuruma. Flock night podberu show e rega vani kuria gengwasfa. Vidhi malega miyaduge kulivertaka balalairu miyadu. Hendunu miwani Eidu sa kuria gengwasfa mige turun fenkulun adi beach kulivarta police beach sarahatuga miyadu kuria gendia. Mige iturun team kulivar mubarata keves miwani kuria gengwasa miyadu haviru. Ege terega football ya itur kulivarta himene. आशा विस्मन दो हो वेस ईदु के तफात कुलीवर तबीदी माले का कुरिया गेंदा ने आशा विस्मन दो कुरिया गेंदा कुलीवर तक बला लायरो कोडी के कुलीवर तक कुरिया गेंदा ने आदि दाफी नेगुम के कुलीवर ता आशा विस्मन दो हो विदी माले का कुरिया गेंदा ने नवा विस्मन दो घर के तक बला लायरुगा कोडी के ने भी हैं आधा बुदिनु मी कुलीवर कुरिया गेंदा ने विदी माले वोटा स्पोर्ट्स बीच उगा दे मी गई तुरुं नवा विस्मन दो मी उन्नी Mali parade adi bodu mastuvu mi aharuge alha ida kulge vilimalega kuria genda paen harakata image tiriswa honihir do vilimalega aidi havire havir onnane den emme fahun ido nimumge goton vadai shoe pandarskya sarahaduka bebu mami vani hamachifa vilimaden mirege ido fa mi show kuria mi gendi mi show nimala mi vakivelani emme hai hun terna varan ufa var paach vere kai demu assalamu alaikum
0: Eat the food.

0: दोहा को सारेंगे तो कजा सारो वादा नंता
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हुम था अबदु एकु गबुमा बाउ तो वे

ज़वीन आरा या दिमाया हिंगा के निरो आरा इनी वाह के फोरी गए नमविस ज़वीन के मुन मथिन फेनुनो असर तकाय को आरा के बस्ता में दुखेंडे मुले मा हौला कुल्ले हिमें कमे फेरवी ए ज़वीन मडमडुंग हिंगा लाफगोस आरा के कुरिमती ग हुट्टी एकको मच तिरवी ए दे आयला के मेंबरों ने वही फाटा लेंती भी एनु तनवा सीमें कम के तिरेगा ज़वीन एना के अतु गोई कुड़ा फोशी हुलवाली ए माँ बुड़ गिरिटी कुरुमें ने एकम को रीति आधा के अंगोटिये के ज़वीन के को में निम्मु में फदाएं ए अंगोटी वेस इख्तियार को फावनी फरुआ तिरिका माए को ए मेदुगा आधा के गोतका फरुमा को फावा रंग एसेंगे ने ए अंगोटिया की आरा के अथा नुहन कुले एगे रीतिकं फंडु नुवाने फद अंगोटिये के एना के अडु मुलिताना वेरिवेफावा हिमे कमगे तेरें नुहन साफ को साबित कमाए कुगे इवे मुंदी ए थिंग आहरु के तीकु इंतिजारा फो हितुक रक्का को फावा शोहरु तके जविन एना के लोबिवा एम्मेंगे कुरिमती कबुन्ये आरा या दिमावी दोहं फेशिगें आहरिंगे कोम्मे दोहिके एम्मे उफाविर बैकी थियाईये।